0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क
2: नेना चुना दिला लहना उज्यालो रेडियो नेटवर्क के सोनिकाले 6.9 MHz सीधा कुरा प्रश्न विचार
3: जजलपा उज्यालो रेडियो नेटवर्क के निवाजा जो लहना पाखे जी कुमारिया उज्यालो रेडियो नेटवर्क के नेवाजा जो लहना ठाउँ नेपाल भाषा या सङ्कीपा खेले नुगु छप गुण केरा स्वा थे असार्य 20 गति गुनु यहाँ रञ्जना हले प्रिमियम जुया वेटिङ सन्दर्भे समाज सेवा खेले सक्रिय जुया चनजीमा उ सङ्कीपा या निर्माता केदार प्रसाद ताना बासुलसे सङ्कीपा खेले नापाङ कुतय तकया खनवाला यटेन वेकलसे छिगुन छुने सरुसा जिमिगु फेसबुक पेजे जुयादि फै केदार सर छिटल्लस कृष्ण ज्याजुले
4: धन्यवाद सर
3: छि समाज सेवा विभिन्न खेले वासै खेले रक्त सञ्चार खेले मेउ तिथि सङ्घ संस्था सक्रिय जन याचना दिउला तर्द न्यहनसिंह सुय खख सियाचुङ ख
4: हजुर
3: ठुठा या ठुक्सी चाहिँ छि आगा झकाँ ढ्यामल जिम्मो लागि आगा झकाँ जुल आछु तयारीले दुनि दुनि दै थो सङ्कीपा देखिउ भन नेपाल भाषै छि त गुप्त सोच होला गुप्त देखिउ ज सुरेन्द्र
4: थो विषयले जी थो फिल्म देखेको चाहिँ के मट्टी दौमुख जिनङ थो विभिन्न रेड क्रसे क्यान्सर रे अग्रोड रोग निवारण संस्था हनुमानगढ सेवा समिति विभिन्न सङ्घ संस्था चौँ ज्या चौँ यो कोटोट जिम फयाउ किसिम समाजता थौ अमूल्य समय बिह चिसम्फको गाली समाज थाका म ओ साथै समाजे न्यौ प्रकार मन्तव्य छौ चाहिँ समाज कय चाहिँ म्या चाहे जिफ हो छौ पछि चाहिँ समाज त थम्नम फयाउ सहयोग ग्वालिङ म्या चाहे जिफ हुँ जी नपाल सिंह मस्तबली सिंह समाज त छुङ ग्वालिङ छि भने म छि थो संसारै नेप्लिन चुहाउँछु नै देखि मुखु ए जुन छुङ ग्वाली त यहाँ त के मलाई मुटी दौ ख साथै जस्तै छौ ढानेहरूलाई त भानुभक्त नङता घाँसिङ उपदेश म बिउ लसा साइड वेकन चाहिँ बाल रामायण चेउ चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिइम खोजी अठे जो नि जिनङ छुङ थो स्व संसार सुन चुहाउने ठाएँ पक्का मुखु ए जो नि सुन यहाँ त के दशा जिउडा खाएँ जी

0: niawate bite biare to jiu gunikera song mereka maju gunikera saya moto uye dau taki ceng ti atau tangkni ya nu samade
1: fukka bigi biare lo makuni cung cung kas kas ka
0: jin cita dah tahu
1: seasonal kani mana
0: jin cita dah tahu konsul asa tangkni jin mesta tangkni purba pachimeli yau प्रभाव चंदन बढ़े जो आज ना पश्चिमी ये प्रभाव बढ़े जो हमले गु तो प्रेम दिवस का थंग देते हैं मने ये मस्त से मने ये प्रेम दिवस का
1: वैलेंटाइन्स
0: डे दे अखयन चीव संस्कार मुख मुख संचयन तो नो फॉर्म मस्त से तो इतना चीन प्रचारिंग वाला अलग ऐसे चीन विभिन्न किस्म या चीन नकली ची प्लास्टिक या स्वंता विभिन्न चीन जो गुरुत्व केमिकल दो चीज़ स्वान्ता यूज़ेबल चीज़ स्वास्थ्य तन ख़राब जेफ़ा अक्या सदा यूज़े याव दर्शा जिके जो प्रकोली चीज़ें पढ़ापुर चीज़ें प्रकटिं बियातो चीता गुन केरा स्वान्ता जो यो को चिंता डा ये जो निं जिसं गुरुत्व चीज़ चलन चलती यां त्याव चीज़ ब्याह बिट्टी के तो प्रेम दिवस के प्रयोगात्मक सा अक्तूबर जन मोटो बढ़े जी उनके सोयानो मोटो बढ़े जी जो संस्कार यानो मोटो बढ़े जी दाउ इसाब नंतर जिम्सन तो उनके रा स्वंदकन नंते आओ का
1: ओ उनके रा स्वायुन उपयोगिता उक्यो विशेषता अलेव उक्यो नापस संबंधी संस्कार संस्कृति ना ठुके निवेटे टुला
0: नए गुनके रा स्वान्ताश नं अकिया चुं अचिया
1: दहिला साला भी क्या चला
0: आवो छिपनान फुकंजिंग खान डेवलिंग
1: फिल्म से माला
0: फिल्म माला ऐसो नी फिल्म स्वेंट ने गुनिंग खाया सस्पेंड ते माला ऐसो नी सेम
1: तो गुनके रा स्वां प्याकों यू टीम बाकों तो टीम का जो का बाकों चोमिसु निर्देशक सु चिकनी वो फिल्म वो टीम सुसु तो भी शेलेंस करते जिसमें
0: तो जी नाम पसे जी समाप्त पसा दुआल पसा दुआल पसा है वो तो
1: जय कृष्ण दुआल
0: हाँ जय कृष्ण दुआल जिन्होंने चाय दियो का
1: वे कौन वाला मीज को चोवल है कि कथाबस्ती
0: कथाबस्ती वे क्या है का ये जो जो इनसे वे का यागु गु इच्छा का वो इच्छा तनंग थकान से अलेप ग्वालियर बीएम मार्टिन सोनी वो इसाबे जीव छमताम प्याजू अंसान चीन याद है मटियां से यहाँ बियाव टाइमल का
1: अलेप में म्यू जस्ट यार फिल्म यू का कथा जुला निर्देशक जुला आ निर्माता ला चीज़ जुला मगला अलेप आ फिर निर्देशन संबंधी विभिन्न वही मी अम्मी यू ना बोलो ना आप विभिन्न प्राइवेट कॉम्बी और जो टीम पुकार पास में नाला लुमा जिन्ची
0: आ तो तकिया और निर्देशन यं प्रीमियर निर्देशन यं ची अबे न अबे जी नहीं यहाँ जुला अले तो मी याव ची मी अलमा निर्देशन है सर अले सब ब्याज कॉम्बी के अपन संबंधित पास आपने कहा तकिये एजुनियन तो जैसा निसा जैसा अठें सब बाला अठें वे क्या
1: बाला
0: मैं तो यो को प्रचार जो चुंग वे क्या गुस सो डोज़ उन्नत जिता चाहिए तो एकदम चाहिए माला वे जिम फ्री
1: बहुत मैं डूटूगी
0: मैं छप्पे जगा
1: छप्पे जगा ला
0: छप्पे जगा
1: अयो माला सो मियाली में छप्पे जगा मिया कोला ले
0: आज पाँच जिम संसंग प्रयास अगर तो जिम्मी जो तो पहलो प्रयास ला
1: गुली ताको फिल्म तो गुली कंटा दो फिल्म
0: दिगंता 40-45 मिनट दूँ
1: अल अबे आको दिगंता 40-45 मिनट दूँ लिते में चाहिए छोटे जगला
0: कठा बस तू जो चौंवाना चंदन में टेबले चाहिए चंदन ताई थे चौंवाना
1: ठोंकने संसार भरे चाहिए फिल्म देखी पिंसा फटी फटी चिया को ये चो
0: अमला खटा
1: अब दी तीन घंटा चार घंटा ताको फिल्म सोचने मंते थाईरेटा मोर लगा थाई मगला अत उत आयो ये फिल्म अजो लासाला आ उखनो तिनी भारतीय देखो कुतुरंदर ताहो ती मगला संसारे तहल क्या मचे तब तस्कर बालाव जुला वो जो ताको जो सामंते सं ये कला मैं की रही खम मखो तर सब बर चाहिए ची आको याव ठेव किस्मियो जनन जु क
0: मिशन से चिया के याँ कुटे याँ को चिया के याँ तोरो से इन थोप फ्री में सहज सं सारे दिन अंदाज़ सं चिपने जा आराम डाटे हैं तुम्हें
1: खोला
0: थोप फ्री में 아토 프리미어 때 인가족 기심에 진짜 라사 사만만도 마이야 스마트 어깨인데 스마트 어깨인 시야 니마 바자 같은 진태로 스마트 러브 메리징에 바자 무침 미스터 원유줄어 무침 미스터 원유블레
1: 바코 하나 푸칸 컨줄어 무질라
0: 아 자꾸 자르 신사가네 뭐 진태 원유블레 왔다 신 뒤 당신 앞선 그저 기심 많이 유커 अले गेजी डराउ ख थकी उल्लेख द अले साथै थंकने
1: सामाजिक के खञ्चल
0: सामाजिक र सामाजिक पारिवारिक तमलका अले समाजले चाहिँ थंकने थौ ठेवया लागिन दोया तिसा वसो फलचा छुये थै मुखु एकता छुये मले चाहिँ फुकन थो लोवे फसे ज वो मन्ते प्रतिस्पर्धा के फसे ज चाहिँ मे पनि मोरसाइल गल निनो मोरसाइल गए म मे पनि कार नङ कार गए म थटे थके चाहिँ वासे रेटी बारे म गए या या चाहिँ जी समाज जेवाक म आउ त दिजा धा मते त अनियमित हिसाब न मन्टेशन जेवाक म गु येयु प्रचलन त द थो प्रचलन न यंग समाज चाहिँ सन सङ्गु जुले थजो जेप न समाज बाकी ते मजु चाहिँ किस्मन चाहिँ थकी सन्देश त चाहिँ द
1: गोम कलाकार दाउ कि फिल्मे
0: फिल्म कलाकार यंग द सलोन सद
1: सलोन सद
0: सलोन सद
1: अनि फिल्म शूटिंग चाहिँ फुक्क खोपे जुला
0: खोपे जको मुख जेसंग अ थो शूटिंग चाहिँ नेपाल नेवाते चाहिँ कलाकार चाहिँ कृत रीति रिवाज त किन मरे जेसंग पनोटी
1: ए
0: अले नाले जे अ चांगनेन गोडावडी अले खोपे विभिन्न थासे चाहिँ जेसंग थो
1: त्यहाँले ठिठी थायो सम्पदा संस्कृति न किन जेल
0: जिउ मेन उद्देश्य धा छु छ थो नेवा फिल्म जोले थो नेवा फिल्म त चाहिँ थो गु चाहिँ तोजी लजी संस्कार त दो फिल्म खक थो फुकुङ समाज नेवया तय मते तय गना गना त चाहिँ जिउ नेवा त कल्चर त द गना गना चाहिँ जगो बामला अचिन्त द थो फुकिने हलि निमे किने या मति खै जिमसन थो फिल्म देखाउ जियो जिमसम पश्चिम फको ठकी चाहिँ समावेशी आउँ त
1: आ नेवा फिल्म एक देखि बोले छौ तर समस्या छुदु धासा संवाद मेला पासको समस्या मुङ मेला यो कोही परिमार्जन जिङ ल संवाद ये चाहिँ कलाकार पिनस शुद्ध नवाउली त तस्कै कुटा मयाक ल कलाकार पिन चाहिँ तरौ अब म कमजोरी ध्याउला अथवा कुटा मगाउ ध्याउला नेपाल भाषा शुद्ध नभएको प्र्याक्टिस मगाएका छु स फिल्मेला सोए भाग्य जाने मला छि या खोपैमा जुनि खोप भाषाएँ अपूर्ण भएको तल दिजी मला के गथे नि भाषा यसले मेमे भाषामा नुवा नगटिला
0: त कि उप चाहिँ
1: ठुलो भएको
0: खोप जानन सुन ज्याजी तर चाहिँ उफो भए चाहिँ थो काठमाडौँ पाखा हजुर ए जोले चाहिँ थो भएसम्म देखेँ त छौ छुल्लक हजुर छ
1: तेरि छ
0: भए शुद्ध अशुद्ध ढायो खा गलत क छ्या गलत दशा भए र छौ अभिव्यक्ति माध्यम ख ए जोले थङ्कने छखान्नु छे बालङ्कय मर्स्यातन्दन बालन चोत्ने नेवतनम बालन चोत्ने खेतनम बलन चोत्ने अङ्ग्रेजनम बलन चोत्ने अलि फुकुङ मचातन मला मेटेबले छौ प्रकार या नुनु शब्द त प्रयोग जो आज हुँदा गजो किसिम जस्तै अब प्रत्यार भएछन् चिया खाने रही नेवासङ झि च्याखे थुङ्ने एउटै इङ्ग्लिस भाषा मे एउटै ए जो चाहिँ लक्ष्यमा चाहिँ गुली शब्द त च्यामा रोटी थुँगेर खाने
1: अहिले छु फिल्म हेर्नु अचेल डायलग
0: अझ त मुखु एनौ ए जो ल धाएर छिटा धाटा चाहन्छु रहेछ चाहिँ पश्चिम भोको जिम्सन चाहिँ मलाउ मते त्यहाँ भाइ जस्तो लगे जु फुकिन नेवर्टेसन चाहिँ प्राय ठिक
1: जिउ जिउ भाषा विविधता दु यहीँ छौ किस्मन नभए यसले छौ किस्मन नभए खोपे छौ किस्मे नाला छौ किस्मन नभए ऊ ऊ छिउ विशेषता क तर आम्छे छिन र चिनी च्याइको उदाहरण भेटे ल अठिल्ला कप खै नाला
0: मुख मुख मुख ए मुख छिटो प्रकार छिन छिन चाहिँ झे भए चाहिँ झे थुका नहुन शुद्ध मल धौली अझको विषय चाहिँ जिन कमेन्टी आउँ तर थो फिल्मले फुकुम्ने फुकम फिल्मले यसलो चाहिँ खामियोज लगा फिल्म ए मुखु फिल्म यङ
1: त्यहाँले छु फिल्म सन्देशमूलक सामाजिक सन्देशमूलक
0: सामाजिक सन्देशमूलक परिवार छी नपान सिंचन गजो किस्मया चाहिँ संस्कार द छ नि वटे अले छ नि वटे व्यवहार गजो किस्मया द समाले परिवार चाहिँ जेसंग गए भने म समा मनुम परिवार आखसल रसा समाज वाले चाहिँ समा आखसल छ उन समस्या जको चाहिँ स्वार्थ सिदे यदि चाहिँ संस्कारी सभ्यता दमा भौमचा मनुदशा वन तयटा बालकी देश एटा है बालकी ए जो जिन जिमसंग मेन उद्देश्य मेन खाना ठो फिल्म के संस्कार सिनेमा संस्कार बेम अले संस्कार त गय हजाक म डावे जि मेन कुत थकी
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क के नेवा जा जो लहना ठौ नेपाल भाषा सङ्की पाखेले नुगु छपो गुण केरा सुवा फे असार बिस गते गुनु यहाँ रञ्जना हले प्रिमियर जुया वेटिङको सन्दर्भ समाज सेवा खेले सक्रिय जुया चनदीमा ऊ सङ्की पाया निर्माता केदार प्रसाद द्वारा बासुलिसी खानावाला यञ्चना
2: श्रोता तथा पाठकको हितमा उज्यालो रेडियो र उज्यालो अनलाइनको अनुरोध
3: खाना पकाइसकेपछि आगो ग्यास चुलो स्टोव या हिटर निभाउन नबिर्सौ
2: ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटर पाइप वा चुलोबाट ग्यास चुहावट भएको छ कि छैन ख्याल गरौ
3: सलाई लाइटर जस्ता आगो सल्काउने वस्तु बाल बालिकाले भेटाउन सक्ने ठाउँमा नराखौ
2: गोठमा कुरो पकाइसकेपछि राम्ररी पानी छापेर आगो निभाऊ
3: बिजुलीका तार प्लग स्विच वा वायरिङ ठिक अवस्थामा छ छैन नियमित जाँच गरौँ
2: जोखिममा रहेको घर बस्ती नजिकै पोखरी ट्याङ्की वा अरू कुनै तरिकाले पानीको जोहो गरौँ सेउला माटो बालुवा थुपारेर राखौँ
3: आग लागि बारे चासो राखौँ चनाखो बनौ
4: नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका कर्जा ग्राहकहरूलाई ब्याज छुटसहित कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना यस ब्याङ्कबाट कर्जा उपभोग गरी विक्रमसम्म 2079 साल चैत्र मसान्त अगाडि खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका बकेउता सावाहरू 1 करोडसम्मका खराब तथा अपलेखित कर्जा ग्राहकहरूलाई विक्रमसम्म 2083 साल आषाढ मसान्तभित्र योजना अनुसार ब्याज छुट सुविधासहित कर्जा चुक्ता गर्ने अवसर प्रदान गरिएकोले सम्बन्धित कर्जा ग्राहकहरूले ब्याज छुटको सुविधा लिनुभई कर्जा चुक्ता गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ साथै विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 1 गते पश्चात निष्क्रिय वर्ग र सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जा ग्राहकहरूले विक्रमसम्म 2083 साल आषाढ मसान्तभित्र बकेउता सावा ब्याज बुझाई कर्जा चुक्ता वा नियमित गरेमा ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएकोले यस ब्याङ्कको नजिकको शाखा कार्यालयमा जानुभई ब्याज छुट सुविधाको लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दछौ शर्त तथा बन्देजहरू लागू हुनेछ समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नेपालको पहिलो ब्याङ्क

0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उजालो रेडियो नेटवर्क
2: नेना चुना दिला लहना उजालो रेडियो नेटवर्क के सुनिगले 6.9 मेगाहर्ज सीधा कुरा प्रश्न विचार
3: दीपाली पाक नच कलस कुसियाना चना उज्यालो रेडियो नेटवर्क के नेवाजा जो लहना थौ नेपाल भाषा या संकिपा खेले नुगु छप गुन केरा स्वा थ्वय असार्य 20 गते कुनु यया रञ्जना हले प्रीमियर जिया वेटिंग सन्दर्भे समाज सेवा खेले सक्रिय जचना दिम उगु संकिपा निर्माता केदार प्रसाद ट्वाना बासुली सिखला संकिपा खेले नापाङ कुतै तका खनावाला यानचना वेकल से छिगुन छु नि सदुसा दिमिको फेसबुक पेजे जेदि फै याजुले आक्नस कलस कुसियान चना छिता छिटो आपल पासपिसन्त भिन्तुना ब्याचुना दिउदु किरण खड्गी नेवाजु भिन्तुना ब्या दिउदु अथे पूर्णरत्न साके जिउन वेट्यङ गुनकेरा स्वायत्त सकल युनिट या त भिन्तुना ब्या दिउदु रामेश्वर श्रेष्ठ न भिन्तुना देशन दिउदु कृष्ण भक्त महर्जन जुन आहा छिङ यो बालक नुवाट तका चाहिँ कमेडियन दिउदु थन विपिन शिल्पकार जुन नेवा सङ्कीपा देखा केना स्वेपी स्वकुमित ओ मध्या थगु लगानी हे उठे मजुदका दाइ छिसन देखु सङ्कीपा न छिसन लगानी यानागु ल्याउ ढका विश्वास तुला गानी न दिउ
4: थो विषयले चाहिँ ओ सङ्कीपा देखे फुकम फाइदा लागिन र जे मजु छार छ छि नेवट सिं जेसं फुकम आर्थिक रुपले न सुत सा छिसन छैं या ने फिमु ए जो जु ने छिसन थो सङ्कीपा देखा मुख्य छिन् जी नेवा नेवा कल्चर हुर्के जियामा जो थजो नेवाटै कल्चर थो थजो कल्चर चाहिँ संसारले स्वयम्रु संसार गनायम्रु नेवटै माध्यमे नेपाल चाहिँ परिचय जो गुलिन्दन चाहिँ थो संसारले थो छि या पनि चाहिँ वियु ख जो नेवटै कल्चर त ता स्वेता है अधिकांश वयु ताकि चाहिँ थो नेपाल कल्चर रह्यो नेवटै कल्चर ख एजुन थेक्टा नेपाली कल्चर या विषयमा अन्तर्राष्ट्रियकरण जुए तुङ्गल धासान्जु एजुन झिसङ पश्चिम फको जी नेवाजु नाटाङ थ गज गज पिसा लाखन लाख करोड करोड खर्च थो संस्कृति थौ कला अले थौ सभ्यता यता चाहिँ मिमि पिसङ गे तामाङ पिसङ फुकेन कुटै चौँ ख ओ पेन खयङ अथो विभिन्न तामाङ टेउल छि नेवा टेउल थप फुकन चाहिँ फुलबारी ख फुलबारी मध्ये खेन छिन छ नेवा टेउ फुलबारी जो जी थकी नेवा टेउमा कया मचा जो या नराखे थो झिङ आमदामी जुसाम मजुसाम थो खेले
3: फाइदा जुसाम मजुसाम चाहिँ थो फिल्म छिटल लव कया मा रे उमरो
4: लव ल पश्चिमपट्टि कया मा ल ओ छिपसे सोचे मो सानन चाहिँ झिङ त्यो आगे न चाहिँ यहाँ उठ्या मालिका ए जोडिन चाहिँ फक्को चाहिँ छिसङ थैक्ता सोय यदि चाहिँ छिप्सङ थोक्लिम त सोय बाल्नक थोकी चाहिँ फाइदा जुया न धसा जिम्मेमे फिल्म त न देख्यो चाहिँ त हौसला
3: म्युजिक भिडियो न दिएको मुखला
4: म्युजिक भिडियो मैले अहिले साथै चाहिँ जिन थकी छौ छुते आउ डर छ थकिन चाहिँ गु वियु ठेवा अन्दाम जी ठेवा ख 10% ठेवा चाहिँ झिमसङ क्यान्सर पीडित बिरामी त्यता चाहिँ खर्च या थो झिमसङ घोषणा या हुँदो थकि उयो थियो क्यान्सर
3: खोपे क्यान्सर अस्पतालले बोडेन दुखे छि मुखला
4: जीव चाहिँ कोसार छ जे चाहिँ जिल्लासम्म छ अहिले अथङ नै पात्ने नै क्यान्सर किन युनिट जी सदस्य द एजुलिन चाहिँ जी क्यान्सर सुम परिवार ओ परिवारमा ओ बिरामजुमा स्टाफ पीडित जी मुख ओ समाप विराम जो लेकिन अकिन चाहिँ अब आफ्नो परिवार तर फुकैस्ता चाहिँ ए समस्या जो यो जोडिङ खपटिन पटले क्यान्सर रोग दा स्वेटा मजुक अरे जी चाहिँ थो क्यान्सर वासै या म फेर चिम त यो कोही त कालीगटिन जुयाचौँ त हो जोडिङ पश्चिम फटले जी छमा क्यान्सर के ज्याँचौँ नाता जोडिङ जिम थकिया ठेवा चाहिँ 10% ठेवा चाहिँ आम्दानी चाहिँ
3: क्यान्सर चेतना सम्बन्धी न छुखन दुछे दुलाई कि थो फिल्मे
4: चेतना सम्बन्धी अनि थकी त्यही मोटिया खो अठे ता त फिल्म गे त्यही अथो विषय लिपा
3: त्यो लगा आन फुक्क चाहिँ लका बुक होइन क्वालिटी ड्याक्ने ड्याक्न मजिला
4: मैला एजोजिन थकी चाहिँ जिमसम्म मोटिया अहिले त्यो कलाकार पासा पिसन हौ यो को थके चाहिँ बाल्नकै यो कोही मेहनत आउँ ख
3: सुसु कलाकार दु
4: थकि किस्मत म किस्तमक्त वरिष्ठ कलाकार किस्तमक्त जयलक्ष्मी बजाचारे अभय सोलाङ अले दिव्या थोजफन दिगज दिगज त बामलम कलाकार त थकि न बामलम यो कुटा श्याम शिल्पकार छु थकि चाहिँ बामलम कलाकार त द अले अभयको कलाकार तैसिन न थकिता चाहिँ यो को मेन टेङ ग्वालिया उठामला अले कलाकार त न छौ खात गजक्ष्म भने म रसा साहित्य चेपसँग कलाकार जो थोर नाटक फिल्म मिति बिसँग जेसँग समाज त समाज हनेङके मटिया चाहिँ गुली तक चाहिँ आफ्नो समाज नपा नपा नपा मानि वेक अप युन मान सम्मान उले दाछनी यदि चाहिँ वेक अप सँग जिब्बालामा जि थसयामा छिप्सन जिता अछिया म ध्या मटिया जुल धसा जस्तै जि सीमा खे सीमा ह सीमा चोन्तले हो यहाँ सुनि सीमाङ कचान चाहिँ वनकिन चाहिँ हो चाहिँ महत्त्व दैमुखु केरा खेन केरा खे चुप्पाके चोर्दै हो केरा महत्त्व जी म क्या अछिन्दै केरा जाने क्या क्या चाहिँ मूल्य दैमुखु यजु नै वेक अप गुलनन जया ख जनता लागि समाज लागि जेतो समाज चेतनामूलक या म ढाया जो मती यजु फुक्नु या मती थुकादन चाहिँ सोचे यात्रा छ छिपिउन चाहिँ बालनाजी देश आयो न मान छिउ सबै त न बालनाजी
3: आ 20 गते छ असार यो 20 गते
4: हजुर
3: रञ्जना हले हजुर प्रीमियर सो जिउका
4: हजुर
3: रञ्जना हले छाले खोपे न याजु यले न याजु
4: याजु
3: ये मुन माउला
4: ये रञ्जना हल भछ फुकैन चाहिँ मासु प्रचलित
3: मासु फुलाङु
4: फुलाङु प्रचलित फुकैन चाहिँ नाङ नाङ व्याचोङ जुनी आ जस्तै नाङ खन पाइ जोर्ना
3: खोपे नौ दुर्गा न त नि
4: नौ दुर्गा न त एनन चाहिँ खै हान्जी खोपा नाटनहरू के किन्ने मौख अलि
3: यसले अशोक मन्तव्य होइन
4: रन्दा घुरी चर्चा डौ ख निवा खेले मिठा उजी चाहिँ चर्चा मरु जोडी जिम्सन चाहिँ रञ्जना अफरिया ढामा
3: अन रञ्जना यु आ नु हले गुली सिट क्षमता ख यो को मनु नि मक लाग्छ चि रङ जति
4: साडी से हुन साडी से नि हुन एक साथी हुन र मन त नि यो
3: प्रिमियर सोले चाहिँ छुचु कार्यक्रम गुप्त या सोच देखा दिया प्रिमियर जितका फर्स्ट आ सिधे सिधे सट्यौ गुप्त सट्यौ गुप्त चाहिँ अब के चाहिँ सुरुवात याउ अनि गनगन के रियो आठक्यु बजारीकरण छि लगानी याना फिल्मलाई देखा दिएर आठक्यु बजारीकरण नल स्वयमा पक्ष नल स्वयमा मगला सुई पनि फिल्म सुई पनि थाहा त छेङ्के नमाला नि मगला गुप्त याउ सोच देखा दिया
4: आज मिसन चाहिँ थो क्लिप त देख क्लिप त खेन छिया पोस्टर त भाषा देखेँ जिमसन थुका त बुझा दिएर भने अहिले बाल्ला बाम्ला ढ्याउ खाए जिमिऊ असिङ्गम प्याने बिम्दा थो किने रुक्यान दर्शक त यो ए असिङ्का लाग्यो लगा थो जिमिऊ तस्बिजा खामु त विभेद हुन कि वेक दर्शक पिसे वेक चाहिँ गजौ किसमान चाहिँ एकदम मूल्याङ्कन काई किता जिम चाहिँ पश्चिम पको सन्देशमूलक बाल्लाउ हिसाबले देखाउ ख अब वेकअपसँग जो किसिमन चाहिँ एसेप्टै वे अनुसार चाहिँ जिमसन चाहिँ थक्ता चाहिँ पलेर भने ध्यामालका थक्या सुन या छो छुन रहेछ सुन समय जिमसन थो नेपाली नौ थो छेउ कल्चर या हो जो नेवार फिल्म ल्यायो देखेँ थाको साह्रै देखेँ थाको योजना छ्या छ थङ्ग्ने फुकै सिमेन्ट छेन ल पुरा पुरा
3: फिल्म चाहिँ नेपाल भाषा यो फिल्म छ ल कि या नेपाली भाषा क्याप्सन टेउ होला न्यारेसन मूल टेउ अङ्ग्रेजी भाषामा टेउ चलन नि होला ऐसियानो रुला
4: मरु मरु मरु
3: नेपाल भाषा होला भन ठिक बाला ख ख अहिले आ प्रिमियर 20 गते चाहिँ गुक्त कार्यक्रम जिल्ली छ सित फुकेस्ट गुक्त छि सहभागी यन्ती छि फिल्म खेले रुचि धुपी यो पास बिन्दु होला थन यो पास पिसँग चाहिँ फिल्म र स्वयमाली थो नु फिल्म लगा धेरै चलन दिउँदो गुक्त अनुभव फिल्म सेउ निम्ति छिँ चाहिँ व्यवस्थापन निम्ति थिएन
4: सिकपिउँ आस भरोसा है थो फिल्म देखाउ ख जिमसन थो नेवा खेले नेवटा ताकि नेवट फुकन छप्पा छटी फुकन थ्रुथ कल्चर या प्रसार जे म प्रसार जे म ढा मुटी यहाँ जिम्मन देखा जो छिप्सम फुकैन जान थो फिल्म त स्वय जिम्ता अर्तिबुटी बिहेरसँग सुझाव त बिहेरीसँग अहिले थो स्वे ढुङ्गा छि छि खानावाला या मैले कहिले पाएको छ
3: अथवा
4: मसुको प्रतिक्रिया चाहिँ वही मुखु प्रतिक्रिया गाडी मुखु
3: स्वे स्वे जिन स्वे अलिक छिउ फिल्म चाहिँ गेचोचको अलिक जिउ पाकेन जिउ जिल्ला फिल्मी बारे यो स्यु मुसाउला मुखु तर चाहिँ जित लगे जु खछ त अवश्य त्यहाँ अब गजौ जु फिल्म मलाई जिल्ला लगे जो खा फिल्म ये माल का आलोचक स्वेला मखु मला अच्छे स्वेसाम टैसाम ला मखु तर जिता ना यो मया ढेला दुनी मला ऐ दुनी अच्छी बीस कटे चाहिए गुट्टा यंदी चला
4: बीस कटे अना चाहिए रणनाने किन्हेज लगा किन्हेज ला अठहत्तर के गए यार है अजमीर सकन सलाय तो बिसे सलाय बीस कटे कंबम्ज लगे नेवटी गया वने उठ है बिसे
3: बीस कटे लाई टिकटे व्यवस्था नीचे ना
4: टिकट व्यवस्था है हमारे टिकट नंबर व्यवस्था जी
3: टिकट यू गुली गुली तक वो टिकट दे याना
4: पांचे मतियाओ का
3: जैसा फुकाम पांचे ला
4: पांचे यह मतियाओ का पांचे मतियाओ तो इसाबन न्यावा खेलते हैं सो ग्वालिया इसाबन हम वोंगा अलेजिंग जिपुं पहला तो जाया पिंडा
3: टिकट मिया था को नहीं थाई
4: टिकट मिया ना था तो मीन खान सोचा खान पैसा भी हूँ
3: तर अच्छी संपर्क अच्छी यंत्रणा जी समाज सेवा अच्छी चाहिए जन संपर्क हिसाब में चाहिए छिता मी था कोई मुख्य टेबु विश्वास का मंगला
4: विश्वास अपस्वन हम थकता जी अशिप्ते ही रह विश्वास जी संपर्क ढाया सो ना तो न्यावा फिल्म जोली पसंसम फिर ना न्यावा खेले न्यावा टेसन जाए अशिप्ते ही रह जूस फोस का अब संपर्क यंग फुगिंचा था तो किसमें संपर्क यंग फुगिंचा दे अथवा जो पहलो कोटा तो पहलो कोटा था छिपसन से 8 बरसा भी अजिता 7 बरसा जिम पकानन से अगर मी मी नो अच्छी अरे तो गु छिपसम तो वही टिबाटा जिम व्यक्तियों तो बेचे हैं यूज में अच्छी सामाजिक रूप बेचे हैं
3: छी तो फिल्म कमे या तासल कमे जुए जुला छी मी उन्हें फिल्म देखा जी मगला मी उन्हें फिल्म देखा जी जी मुझे लासल है संभावना जाऊँ ना जुनी है ना यो को पश्चिमी से ये वाला फिल्म देखा गो खत्म कर देखा टाइपी ना दू निराश जूपी ना दू छी चाहिए स्वयंती का तो ना पस्त आए
4: जी सेवा या खा के चाहिए जिसले मुख भयाव किस्म चाहिए सेवा
3: वाला छी तो मशूबी फुक्शन शूनी छी स्वयं चौम देखा फुक्शन शूनी
4: और ये वाला खेल तो जो अगर सच पे
3: फिल्म खेले थे इसको
4: फिल्म खेले अगर चाहिए जी मियो को
3: फिल्म छी तो निराश ले यही मुख
4: यही मुख जी मुख जी मुख
3: उत्साहित यही
4: उत्साहित यही बिना विश्वास तो थोपली में उत्साहित है जी बालना ये फुकन सोकमिते से जिम्ता चाहिए थोपली में बालना वही खाओ जगह जिल चाहिए बालना ये जी रहा आसात है जिम्सन तो कि चाहे सार सार जिम्सन यो कोई जिम्मी तो मेहनत में हो कलाकार पसापियों ना यो कोई मेहनत तो उड़न थी कि हम सने वेकअप सने थो धो दुनम फयाउ क्षमता किंग कला थतो कौशल कला कौशल त क्यों है याउ खनी
3: थनपति सरा सामी जुनिना दिदो सकल सित आपल पिंतुना बकन चोई दी दो संकी पाया सफलता या काम नहीं है ना वो कनो खोपे में खानी शियाला
4: शिया शिया
3: रंजना हाले गुली ताई ले गुली बजे क्यों नहीं जा जीव खा देखा नहीं ना जीव का
4: सुधा आठ बजे रहा खान जुड़ लगा
3: आठ बजे
4: तब मैंने जिम्सन निने क्यों बिया रहा दो मुखला सुधा आठ बजे याद दो पश्चिम पटले जिम्सन निने घन सकते अच्छी है जिम्सन थंग
3: थंग सुधा तो साना पाई मुख जी
4: टाइम मिले आओ अचिंजू डब
3: बरो खोपे पिंटा वेल थाक बिजी
4: सुथाय
3: ये पिंटा लो सुथाय जो धंचे चला
4: वे कम सुथाय ना वो जिम समझ इतना जिम जी लगा भी आते आओ डब वे कम संजय यार है खाने उधर थान जी वहाँ खाना है तो खान जिम सम पिवे प्रति प्रतिशत सही मेरन चिंग तो पिंटा चासुता जी अभी से ये कोई कुछ चिता सुबह सासा ची खोपे ना मियाम जा खा तो अच्छी खेलना चाहिए न्यान न्यावया दिमाग हा अच्छे भी नहीं ज्ञान गुण का है जिम्सन अन थकता से मटिया तो फिल्म देखा होता है हमारा ऐसे जो नहीं जिम्सन अन थकता से प्रसार प्रसारिंग
3: तो कौन ची नग देशे सुप्रीमियर पे यंत्र मी योला
4: मी या तो गुण के ना समय मी या
3: ठगी दुनिया
4: दुई मी ठगी निर्माण निर्माण निर्माण निर्माण
3: वो ची तय दिल नहीं
4: अगर गुड
3: वो छब्बे जग में तो गाते दिल नहीं वो में चाहे प्यार वो प्यार वाला
4: प्यार वाला प्यार निर्माण प्यार वाला की
3: ये उन्होंने चाहे वो में यूज़ कर जुगा मतलब आप फिल्म में जुगा
4: आप फिल्म जुगा
3: अरे वो यार वो फिल्म अथवा प्रीमियर जीत होंगा अरे चाहे गन गन किन्हीं हो गैगैन किन्हीं हो जीता
4: पहले
3: अच्छा कुलाना ला अथवा यूट्यूब पे वही मखो
4: जी मखो जी
3: मगला फिल्म ला वही मखो म्यूजिक वाल का फिल्म ला वही मखो आ फिल्म स्वेता ना चाहे अच्छी तो मामा जी माव किस्म जो लासला है ना फिल्म वाले ते मगला वाले आना मुंते तो छकुलन लिखा है मजला मुंते ला मला सोया सो वही
4: अब जिमसँग झन् छो मनते आवश्यकता अनुसार छु व्यवस्था या मलाई कि जिमसन चाहिँ ध्यान त्यो कुटै है छिप्सङ ग्वालियरसँग जिमसन छिप्दा
3: यहाँको मजिला यसले खोपेन त्यहाँ
4: यहाँ यसलाई खोपे अहिले चाहिँ थोप मान्न भन्छ जिमसन नेपालिङ यहाँ चाहिँ हलिमे संसारै फुकुम्ना फुकुम्ना थ्याङ्क्यु विदेशी नै थ्याङ्क्यु जिम्मे कुटा डट कि अठो छियो संस्कार कल्चर
3: विदेशी न यो पिँ पास पिँदो नेवा संस्कृति सम्पदा नेवा फिल्म सङ्गीत यता चाहिँ यो कुपी विदेशी चोपिँ पासपिन छन छम्म का नक्तिनी छिँ ध्या सार्कन थन पासा उयो चाहिँ तन गोले सिफले छोरा जिम्म विजयजी ख उयो चाहिँ थौकने युरोपे डु
4: उयो
3: कल आ छु फिल्म या त चाहिँ बधाई बिहा गुक्त चाहिँ स्वेदै गुक्त चाहिँ छि मार्केटिङ यन्दी जिमसँग स्वेद दिएको चाहिँ गुक्त चाहिँ व्यवस्थापन यन्दी दका चासो त्यही दिदो
4: धन्यवाद
3: विजय डङ्गोलज्यू
4: जिमसँग
3: बेलायत
4: चाहिँ जिम्मेको त गटाउने शोषण सल्लाह यहाँ हुने चाहिँ छिपिन जिम त गेस्टला सल्लाह भइहाल्छन् जिमसँग छिपिन सल्लाह त मार्केटिङ सय रुपियाँ कहे चाहिँ जिमसँग चाहिँ बल्लाउ मट्टी त्यही ज्याए
3: यिन को चाहिँ न आ अन्त्य छु डुला छिउ आ नुगा ख छु ढ्यामा डुला जि नि टोफ्यु ठे चङ्गु छि छु ढ्या टोफ्यु ठे चङ्गु छु डुला
4: नुगा ख जिउ ठयो लगा थो जिउ पहिलो कुट पहिलो कुटो जो नि जिमसम पश्चिम फक्को निवा खेले या उनी थकी चाहिँ थौ कला कृतित रीति रिवाज त तजिल्लो त जिमसम थकी समावेश आउँदा ओ स्वादिसँग चिसँग या फ्याउ किसिमन जिउ बोल बुद्धि फ्याजु हिसाबमा जिमसन थकी या आउँदा छिपम फुकेन स्वादिसँग जिम्ता सल्लाह सुझाव बिहेर्छ लिपा हाक हने भने त्यहाँलाई कि जिम्ता ज्ञान बुद्धि बिहेर्छ थकी चाहिँ सोच भने आइकालाई छिप्दा यो कोही कसो भए
3: हस् ठिक चाहिँ फिल्म नहुदिएका थिएँ ल छेउ खाने खन यो कोही कसो भए छ त
4: धन्यवाद पछि
3: उज्यालो
4: उज्यालो नेपाल रेडियो तान यो कोही कसो भए छ्यास छिन थुलिन यङ जिनन थो उजेल नेपाल दो या नाटक हे थाहा छु भने जु नियो भाषण थौ खाँ ते डट एजुने चिता यो कोही कसो भए अरे छेउ परिवार थो उजेल नेपाल आफ्नो सम्पूर्ण परिवार तान जिउ पाएको सुभा
3: यो कोही कसो भए उज्यालो रेडियो नेटवर्क के नेवा ज्याजो लहना ठाउँ नेपाल भाषा या सङ्कृपा खेले नुगु छप गुण केरा सुवा थुए असारे बिस गते कुनु यहाँ रञ्जना हले प्रिमियम चिया भैटेङ्गु सन्दर्भे समाज सेवा खेले सक्रिय ज्याचना दिमा उगु सङ्कृपा निर्माता केदार प्रसाद ताना बासुलिसी सङ्कृपा खेले नापाङ्गो कुताइ तया खानावाला यहाँ नौजुल ज्याजो यहाँ दिमा छिटो शुभा देशाञ्चना यस त्यादि पि सकल पस्पिन्तन शुभा प्राविधिक पासा प्रवीण श्रेष्ठ हेट्नु शुभा देशासी थौँ ज्याजो थन्याएको च्याके उज्यालो रेडियो नेटवर्क यहाँ छ।